0: This is Fresh FM, the station that lets you make the content. It's 8 o'clock.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ, शनिवार शाम 7 बजे मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
2: वेलकम टू द व्हाट डू यू डू पॉडकास्ट, वेयर आई चैट टू पीपल अबाउट देयर जॉब्स, देयर करियर पाथ एंड देयर एवरीडे लाइफ। Whether you're still at school and wondering, what am I going to do when I leave? Whether you're thinking of changing jobs midlife, or just love to listen to different people's choices, this is the place to be. Sit back, relax, and enjoy listening to the many careers and jobs and things that people do.
3: Fresh FM now brings you a program from one of our sister community access radio stations. If you'd like to present your own show on Fresh FM, send us an email on nelson@freshfm.net.
4: Join us now for Ta Talanoa, for heartfelt conversation around connection and encouragement in the Samoan Language Show, hosted by CNE Richardson. Ta Talanoa on Now here at RTFM.
5: Ia e whamomua lava le nei a wanoa o te whatalo whātua i a te oto o malava. Ia pofea lava le meolo e whafonga mai whalongolongo. Mai maua mai e whotato po kalame le nei o le tātala noa i a talo si olo o manuia o malava o tau. Ia, ai mai se foile nei au au na oa foile tato whatasinga foilunga nei po kalame. Ia, e... Mōmbo lava o nga tato sivi inga, I le tato tamau le langi a wawana whamanuianga lava. Lofa pia I lava o nga tato maua nei avanoa matanga o fie. Ai meise e fo le toifo maua I a te oto uma lava I le nei fo I aso fau wa tato aulia mai. Ia o ana whamanuianga lava e maua ai nei whamanuianga ele ngata le tato Aulia le nei aso fau, ia o tatou toi whatasi fo I mā, nai o tatou ainga, nai o tatou

0: This is Fresh FM radio that gives you a voice. It's 4 o'clock.
1: Discover how housing can shape vibrant, resilient neighborhoods. Tune into The Homefulness Show, available on all podcast apps, the Common Ground YouTube channel, or at commonground.net.nz/show, as well as Fresh FM. Broadcast Thursdays at 11 a.m. with a repeat every following Thursday on 107.2 Nelson, 104.8 Nelson-Tasman, 95 Takaka, and 88.9 Blenheim.
2: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।